सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर थां रमिया होया है, इस तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहिंदे ने सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालिक तेरी जोत लाई है। तिसकै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुर साखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुर साखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुर साखी जोत प्रगट होए, तो जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, तो फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनान वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जति जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप कीता, बड़ी बड़ी भगति कीती, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण विच आ, तेरी शरण विच आ डिगे, तेरे चरणां नाल लग गए कि हे मेरे मालक, असी तेरा अंत नहीं पा सकते। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, तो तू ही उस लैंड से ना तुरी, तू वो आरती करनी है जिहड़ी आरती तेनू गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुरु पूजो भाई, आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों नाल लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बदमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच ब्रह्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा ब्रह्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बार है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते हैं,

0: ज्वाले
1: दो सिर मांगो चूना चूना के देने आटे दो सिर चाहिए पाओ घ्यो संग लूना एक पा घ्यो ते नाल लून भी चाहिए अद सिर मांगो दाले अद सिर दाल भी चाहिए है फिर कहते ने मुको दोनों वक्त ज्वाले दोनों वक्त का काम हो गया दोवें वक्त आराम नाल निकल जाएंगे फिर कहते ने हे परमात्मा खात मंगो चौपाई सहरा ना अवर तुलाई हे मेरे मालक एक खाट खाट कहते ने खाट मंगो चौपाई चौपाई का भाव है चार पैर वाली मंजी हुण ओ मंजियां इत्थे ते है नहीं इत्थे ते बैड ही मिलदे ने तुसी बैड कह लो गल इको ही है हुण कहिंदे ने भगत जी हे परमात्मा मैं तेरी भगती करन वाला मैं पुजे नहीं सोना पर कई जगह सानू भी पुजे सोना पैंदा है क्योंकि इंतजाम नहीं हुंदा पर ख्याल कर लेना ये भगत जी बाणी विच कह रहे हैं ये डिमांड मेरी नहीं है भगत जी है भगत जी कहते हैं हे परमात्मा मैं पुजे नहीं सोना खाट मंगो चुपाई सराणा और तलाई एक सराणा के नाल तलाई भी चाहिदी है कहते इथे ही बस नहीं उमर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा हे परमात्मा उपर को मांगो खींदा उपर वास्ते सोनी रजाई भी होनी चाहिदी है वेख फिर तेरा भगत करे जन थींदा तेरा भगत तेरी भगती कितनी खुशी नाल करदा है साध सकते बिल्कुल सही गल है जदों मनुख नूं खाण लई पहनण लई बहन लई सौण लई थां अच्छी मिल जाए ना वह कहिंदा बस इतों वध होर की चाहिदा है खाणियां ते दो रोटियां ही ने ना खाने ते दो फुलके ही ने ना इतों वध होर की चाहिदा है सही बात है जिस गृहस्थी दियां घर दियां मंगां पूरियां हो जाण साध संगत उहनूं होर कुछ नहीं चाहिदा अंत विच भगत जी ने गल बड़े कमाल दी कह दित्ती कहिंदे ने हे परमात्मा यह ख्याल करी मैं एक भगत होण दे नाते मंग रहा तेरे कोलों कि ते ना कह नहीं कि बड़ा लालची है सब कुछ ही मंगी जाता है मैं ना ही कीता लभो एक नाओ तेरा मैं फबो हे परमात्मा ए कोई मैं लोभ लालच नहीं कीती ए मत समझी कि मैं लालची हो गया नहीं लालच उसनू कहिंदे ने जिसका ना अगे ना पिछे ना धी ना पुत्र ना पिशाक ना संबंधी कोई भी ना होवे फिर वह माया पिछे भजा फिरे उन्हें कहो ये लालची है ते जिहदा भाई घर बार है धीआ पुत्र ने बाल बच्चा परिवार है साग संबंधी ने सौ किसी नाल आना जाना मिलना करना उन्हें तुसी लालची नहीं कह सकते उन्हें जरूरत कह सकते हो इहदी जरूरत है इहने जो मंग कीती है जरूरत वास्ते मंग कीती पर असी अज लफ्ज लालच वरत देते हैं जी बड़े लालची हो गए ने बिल्कुल नहीं गृहस्थी दियां लोड़ां इतनियां वध चुकियां ने तुसी उन्हूं लालची नहीं कह सकते हो उहदियां लोड़ां इन्नियां ने आपां अपने वल वेख लिया करिए जे साडियां लोड़ां वध सकदियां ने साडी डिमांड वध सकदी है ते भाई किसे भगत दी नहीं वध सकदी उहदी भी वध सकदी है इसलिए ख्याल करना मैं ना ही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फबो हे परमात्मा ये मेरा लोभ लालच नहीं है तू वेख मैं तेरा नाम ही ते अपने हिरदे विच वसाया है हुण जिथे ना वस गया भगत जी कहिंदे ने नाम नूं मुख रख के सब कुछ मंग लो परमात्मा देण नूं तैयार ने फिर कहिंदे ने कहत कबीर मन मानिया मन मानिया तो हर जाने बस ओ परमात्मा ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਤੁਝ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵਣੀ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਡੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਰਸਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ

परम सत्कार विशासन है। जन नानक तोड़ मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरै नाम जपावे। गुरु नानक भी उसकी चरण तोड़ी मंगते हैं, जिड़ा जपदा है और जपांदा है सतनाम श्री वाहिगुरु। लाहौर दे विच एक वैद है सुजान चंद, नाल इहदा एक मित्र है, कविता गांदा है, कवि है, पर दोनों दुखी। सुजान चंद यह कहिंदा मेरे कोल धन दौलत की कमी नहीं, पर मन दुखी रहिंदा। कवि क्या करदा है, सुजान चंद तेरे कोल सब कुछ है तू फिर भी सुखी नहीं। मैं कवि हां, हिंदुस्तान ते औरंगजेब दा राज है।

अज तेरा चेहरा दसदा है तू बड़ा खुश कुछ मिले। कवि कहन लगा हां अज मैनू भी कथा मिल गई है। वो है श्री आनंदपुर साहब जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे हन, जिहड़े किसे बादशाह कोलो नहीं डरते। एक कवि ते की सुनिया उन्हां 52 कवि रखे हन, वो कवियां दा बड़ा मान करदे हन। मैं चलिया आनंदपुर साहब सुजान चंद, जे तू भी चलना है तो चल। चंगे दोस्त दा काम है चंगा राह दसना। सुजान चंद ते कवि लाहौर तो चले आनंदपुर साहब पहुंचे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार सज रहा है, संगतां दी भीड़ लग रही है। कवि दी वारी आई मथा टेकिया, कहन लगा महाराज ऐडा वड़ा हिंदुस्तान पर मेरी कविता दा कोई मुल नहीं पा रहा। सा संगत एक बेनती करदे आ, ये कोई सुनिया सुनाईया गल्ला नहीं, ये साडे हिंदुस्तान दा इतिहास है। औरंगजेब दे वेले राग रंग बंद सन, कविता बंद, पूजा पाठ बंद, और ये हिंदुआं नूं जबरदस्ती मुसलमान बना रहा सी। इसने राग बंद कीते, तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नूं हुक्म कीता राग गाओ। औरंगजेब ने कहा किसे ने कविता नहीं गाणी, तां गुरु साहिबां ने 52 कवि रखे, कह दिता अणख नाल जीवना है, ना जुल्म करना ते ना ही जुल्म सहना। इसे वास्ते आनंदपुर साहब विसाखी वाले दिन अज तो 300 साल पहला धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे पंथ की साजना की। इस कवि ने बेनती की थी, महाराज मेरी कविता दा कोई मुल नहीं पांदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे जिदी कोई था नहीं ओदी गुरु नानक थां है। कवि नूं रख लिया। सुजान चंद दी वारी आई, इसने भी मथा टेकिया ते कहन लगा महाराज मेरा मन बड़ा भटकदा है, सब कुछ है कोल पर मन नूं सुख नहीं। साहब जी कहन लगे दौड़ जा, समझ ना आई। कहन लगा महाराज किथे जावा, साहब जी कहन लगे तेनू क्या दौड़ जा। तीसरी वारी कहा मथा टेकिया, जिधर पैर लै छुरे उस पासे दौड़ पिया। शाम पई, पैर नूं ठोकर लगी, सुजान चंद धरती ते डिगा ते बेहोश हो गया। जद होश आई ता की देखदा पिंड दे बंदे इस नूं पिंड विच लैके आए सन। पिंड वाले पुछदे हन कौन है, कित्थों आए है, किथे जाना है। सुजान चंद नूं समझ आ गई सी, कहन लगा आया वा आनंदपुर साहब तों, जिथे जाना सी उथे पहुंच गया। मैं वैद हां, पैसे नहीं लवांगा, रोटी कपड़ा लवांगा, तुहाडी सेवा करांगा। जड़ियां बूटियां लिया के दवाई बनांदा है, जिसनों भी दवाई देंदा है उसनों कहंदा है बेटा पहला कहो सतनाम श्री वाहे। समा बीता गया, संगता आनंदपुर साहब जाके क्या कर दिया हन, संगता आनंदपुर साहब जाके क्या कर दिया हन। महाराज अमके पिंड एक वैद है, पैसे नहीं लेंदा, सेवा बड़ी करता है, बहुता बोलता नहीं, पता नहीं कौन है। जद संगत कहती है पता नहीं कौन है, तो सास संगत मेरा कलगियां वाला धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगो मुस्कुरा पैंदे।

मानो उन्हां दी मुस्कुराहट ये भेत दसदी है, तुसी नहीं जानदे भाई सुखो वो कौन है, पर मैं जानदा वो कौन है। आओ एक बारी सारे

गल दे नाल लगाया ते गल दे नाल लगा के कहन लगे ओ सुजान चंद ओ सुखा तेरी सेवा परवार। एक समा सी असी तेनू कहा सी दौड़ जा पर तू सेवा इतनी कीती अज तेनू लैण वास्ते आए हैं अपने नाल लैके आनंदपुर साहब आए और इतने दयाल हो गए अमृत तैयार किया सुजान चंद नू अमृत छकाया और नाम वैद सुजान सिंह रखिया। आओ भाई जीउंदे तो असीं सारे हाँ पर असल च जीना उस दा है जिहड़ा नाम जपदा है जिहड़ा नाम दूसरिआं नू जपांदा है जिहड़ा भला करदा है और भला मंगदा है असल च जीना उस दा है। आओ खालसे दा 300 साला साजना दिवस मना

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इनू ए पता लग गया।

कोई गरीब है, गरीबी घर विच एडी एडी है कि अपने मोढ़ियां तो भी उची हो गई है। ये जो गोलक है, ये गुरु घर की जो माया है, ये इना गरीबां वास्ते, मजलूमां वास्ते, लंगर वास्ते, जो पीड़ित लोग हन, ये सत्संग जीओ, ये जो गोलक है,

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई
1: गुरु रामदास राखो सरनाई
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रसपिन।

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहब वाले पास्यों शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नू डराने दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित

मार्गदास की स्त्रियां मर्दाना पटने शहर दिया गलिया से बाजारा फिर मार्ग की दिखती रविदार इसके कोल दान देने वाले ने बख्शिश की थी मर्दानिया ए अमर वस्तु पर बड़ी हैरानी है इसके देने वाला ही कोई

आणि म्हणून माझी दाखवा करावा लागेल मी पता ते सांगू वस्तू मिळ जाय ते साधा भेटते असा नाम को कीता सब कीर्तन कीता से सुने सब लाभ हो जाएगा करो अरदास जिन्हें सस्ती में फूटे है और पानी जरूर मिले जिन्हें सस्ती में फूटे है और पानी मिले जिन्हें खोजिए है और मार्ग लुप है जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है और ये अरदासा मेरा धन गुरु नानक पर पहले सेवक बोलेगा पीछे प्यार ना सारे बोलो।

सदसन का रखा उत्सुक कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अनदिन मंथन पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल वसना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहिगुरु ने पुत्र की दात दी है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर

प्यार परे वचन, चंगे वचन करो भाई, चंगाई दुनिया में बदलेगी। लेकिन ये ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, आप जपो अपने धाम की।

0: की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ।
1: जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा है, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड़। कबीर साधु की संगत रहो, जौ

छे जन युग में सुखवासी छे मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याया जी तिन का भौ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप।

कार ओ करे तेरा कार सब सवारना सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विचारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरा सब कुछ है जित देवे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुखमन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरविटो जित दिया वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवस्त कीते काल कंटक मारिया धुर करम पाया तो जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ तित घर अनहद बाजे अनज सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रप पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरथे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर आभर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब अधारो जिसका सब अधारो जेको खावे जेको पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त जी न जाई नित नित राखुर धारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक मै

के दूत नाए तेरे चढ़ जाए पवजल बिखम अशगा गुरसब्दी पार पाए जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए काल में एहो पुन गुण गोविंद गाए सब सैनो कृपाल समाले साए साए बिरथा कोई न जाए जेवा आवे तुद आए। सलोक मैला पंजवा अंतर गुर आराधना जेवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुर पेखना सरमनी सुनना गुरनाओ सतगुर छेती रत्या दर गह पाई थाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वथ दे जग मैं उत्तम काढ़िए विले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनोना विसारियन साध जना के संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए।

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहली शब्दों की कैसेट संगतों के वास्ते भेंट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबर अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तीरा तू फंगा नु भी पीर गया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैती भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तरवार है, के तू ही तीर है, तू ही बरछी है, तू ही तबर है, तू ही तलवार।

जिन्हें दोनों पैर अगले चुके हुए ने। भाई बचित्र सिंह ने एक हाथ नाल कोड़े की लगाम फड़ी, दूसरे हाथ दे नाल और नागनी फड़ी हुई है और जोर दी वगा के एक जकारा छड़ के और नागनी मस्त हाथी दे

प्रेम ना करो, एक परमेश्वर की आराधना करो, तो फिर देखो तुहाडी किस तरह जित होवेगी। ते कहंदे ने एही उपदेश सहबा ने सारे

इसे बन के अपाई परमेश्वर ने जो देता है साबत सूरत उसनों कायम रखो। इंसान सारी उम्र वाल कटता है पर वो फिर भी आंदे जांदे ने, क्यों कि जो कुछ देना

विरला जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है, प्रभु वाली

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ ना हो जाती। साथ सगत बोलो श्री टुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पा

ते सेवा संभालदा दान खालसा जिन बख्शा इन माणियां दे माण ताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु।

हर गुण गावे सहज सुभाए। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दा पावन बचन साडे सन्मुख है। गुरदेव जी ने अपने इस बचन राही साडे नाल मिल के ते ए गल प्रगट कीती है कि भाई दुनिया दे अंदर संसार विच होर भी कीमती चीजा हन जो मनुख दे जीवन दी उसारी कर दिया ने, पर मनुख दा आचार, मनुख दा आत्मक जीवन ओ जिस धन नाल उसरदा है, ओ धन वाहिगुरु अकाल पुरख दी सिफत सलाह ए बाणी है। ते इस धन दी प्राप्ति सानू सारयां नू होई है। इसे करके गुरु साहिब ने शब्द दा आरंभ हम शब्द तो कीता है, जिदे विच समूह नू शामिल कीता है। कहिंदे ने हम धनवंत भागठ सच नाए, कि असी सारे जिहड़े जीव हां ना असी धनवान हो गए हां, भागां वाले हो गए हां उस सदा कायम रहण वाले वाहिगुरू दे नाम दी बरकत नाल। क्योंकि इस बाणी विचों सानू उहदी सिफत सलाह ते नाम जपण दी प्राप्ति हुंदी है। इसलिए कहिंदे ने हर गुण गावे हैं सहज सुभाए, कि असी अडोल अवस्था विच ऐसा सुभाव बना

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेन इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो? इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, ये तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा है, दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, ये ओनू दिंदा जिहदे ते उह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शियां दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए।